सनातनची कपादवा शंख चक्र गदा पद्मांकित पादवा अंकुश कुलिज ध्वजारे कांकित पादवा शंख चक्र गदा पद्मांकित पादवा अंकुश कुलिज ध्वजारे कांकित पादवा पंकजासन हृदय दल्लि नलिव पादवा संकटारण व्यंकटेशन दिव्य पादवा पंकजासन हृदय दल्लि नलिव पादवा संकटारण व्यंकटेशन दिव्य पादवा इको नोडे रंगनाथन चिक्कपा।

0: आज पीते हो गया है
1: क्या
0: चार चार चार ओ राजा चार चार चार ओ राजा चार चार चार आज पीते हो गया हमको आज पीते हो गया हमको
1: क्या
0: प्यार प्यार प्यार ओ राजा प्यार प्यार प्यार ओ राजा प्यार प्यार प्यार
1: हलुआ बाबू जी हलुआ।

0: जानू।
1: आज हमारे घर में दे दो, आज हमारे घर में दे दो।
0: क्या
1: तार तार तार ओ राजा, तार तार तार ओ राजा, तार तार तार। आज कितने हो गए आंखों, आज कितने हो गए आंखें। चार चार चार ओ राजा, चार चार चार ओ राजा, चार चार चार।

0: हार हार हार ओ राजा हार हार हार ओ राजा हार हार हार आज किसी पे हो गए आज किसी पे हो गए चार चार चार ओ राजा चार चार चार ओ राजा चार चार चार
1: आज न जाने पागल मनवा काहे को घबराए हित हित हित की आए रे तबीयत बिचकी बिचकी जाए।

प्रयाग न जाने पागल मनवा काहे को घबराए। हित हित हित की आए रे तबियत बिचकी जाए। डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा डेड़ा डेड़ा डेड़ा डेड़ा।

रूप नशीला एक झलक में दिल की दुनिया लूटे। जब देखूं अलबेला आंचल दिल पे बिजली टूटे। रूप नशीला एक झलक में दिल की दुनिया लूटे। कोई शराबी मद का प्याला जैसे पी के आए। हित हित हित की आए रे तबीयत बिस्की बिस्की जाए। दिलाता जी

सारे पंछी बनके हो गए 9, 2, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 इस मुश्किल में जान फंसी है अपने बज गए 12। होश हमारे पंछी बनके हो गए 9, 2, 11 इस मुश्किल में जान फंसी है अपने बज गए 12। रूप की गर्मी शोला बनकर दिल में आग लगाए, हित हित हित की आए तबीयत हित की जाए। अरे आज न जाने पागल मनवा काहे को घबराए, हित हित हित की आए तबीयत हित की जाए। दिला का दिला का जो जो जो जो दिला दिला का दिला का जो जो

साजन जाने पागल मनवा काहे को घबराए, हित हित हित की आए रे तबीयत बिचकी जाए। डेड़ा टा डेड़ा टा डेड़ा टडा, डेड़ा टा डेड़ा टा डेड़ा टडा, डेड़ा टा डेड़ा डेड़ा डेड़ा डेड़ा।

रूप नशीला एक झलक में दिल की दुनिया लूटे। जब देखूं अलबेला आंचल दिल पे बिजली टूटे। रूप नशीला एक झलक में दिल की दुनिया लूटे। कोई शराबी मद का प्याला जैसे पी के आए। हित हित हित की आए रे तबीयत बिच की जाए। दिलाता दिलाता जो यो छुटो दिलाता दिलाता जो यो छुटो दिलाता दिल दिल दिल दिल दिल दिल ले। अरे आज न जाने पागल मनवा काहे को घबराए। हित हित हित की आए रे तबीयत बिच की जाए।

होश हमारे पंछी बनके हो गए 9, 2, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 इस मुश्किल में जान फंसी है अपने बच गए 12। होश हमारे पंछी बनके हो गए 9, 2, 11 इस मुश्किल में जान फंसी है अपने बच गए 12। रूप की गर्मी शोला बनकर दिल में आग लगाए, हित हित हित की आए तबीयत हित की जाए। अरे आज न जाने पागल मनवा काहे को घबराए, हित हित हित की आए तबीयत हित की जाए। दिला दिला सजो जो सजो तू दिला दिला सजो दिला दिला दिला दिला दिला

साजन जाने पागल मनुआ काहे को घबराए, हिच हिच हिच की आए रे तबियत बिचकी जाए। डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा।

रूप नशीला एक झलक में दिल की दुनिया लूटे। जब देखूं अलबेला आंचल दिल पे बिजली टूटे। रूप नशीला एक झलक में दिल की दुनिया लूटे। कोई शराबी मद का प्याला जैसे पी के आए। हित हित हिस की आए रे तबीयत बिस्की बिस्की जाए। दिला ता दिला ता।

तोरे आज न जाने पागल मनवा काहे को घबराए। हित हित हित की आए रे तबीयत बिटकी बिटकी जाए। बेड़ा का डेड़ा।

होश हमारे पंछी बनके हो गए 9, 2, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 इस मुश्किल में जान फंसी है अपने बच गए 12। होश हमारे पंछी बनके हो गए 9, 2, 11 इस मुश्किल में जान फंसी है अपने बज गए 12। रूप की गर्मी शोला बनकर दिल में आग लगाए, हित हित हित की आए तबीयत हित की जाए। अरे आज न जाने पागल मनवा काहे को घबराए, हित हित हित की आए तबीयत हित की जाए। दिला ता दिला ता जो जो जो जो दिला दिला ता दिला ता जो जो

0: फरियाद करते करते पर्दा जरा हटा दे अजमेर वाले बाजा,
1: पर्दा जरा हटा दे अजमेर वाले बाजा,
0: अजमेर वाले बाजा।

बंदा मगर तुझसा न पाया कोई। हाँ, अपनों ने मुंह को मोड़ा, दुनिया ने साथ छोड़ा, बेबस समझ के सबने बेकस के दिल को तोड़ा। अब तू ही आसरा दे।

ये राजा पहला लोगो ये नगरी अनमोल उत्तर ढोल धमाधम बाजे भीतर पूनम बोल जिन्हें चावल खेलती रखता है एक यहाँ पर बोल।

जमाना है बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है दामन बचाना मेरे पीछे, बड़ा है जमाना है बड़ा मुश्किल है।

0: से देखे तो मुश्किल है कि खामोश रहे। मेरा जिम्मा है किसी को भी अगर होश रहे।
1: हाय हाय हाय हाय सच्चे।

0: के हम ही हो के खफा भूल गए, जब मिली आंख तो सब जोर जफा भूल गए।
1: ओ कसम खुदा की, क्या कर

सुनो, किसी दिल वाले का सवाल सुनो, कहाँ चले जी जरा हाल सुनो, किसी दिल वाले का सवाल सुनो, वहाँ खड़े तुम यहाँ खड़े हम, सोचो जरा, बोलो बोलो, अरे कुछ तो बोलो।

मेरा हाल सुनो, किसी दिल वाले का सवाल सुनो, कहाँ चले जी जरा हाल सुनो, किसी दिल वाले का सवाल सुनो, वहाँ खड़े तुम यहाँ खड़े हम, सोचो जरा, बोलो बोलो अरे कुछ तो बोलो, दिल ना तोड़ो गुस्सा छोड़ो, अब तो निगाहें मिला लो।

सुनो, किसी दिल वाले का सवाल सुनो, कहाँ चले जी जरा हाल सुनो, किसी दिल वाले का सवाल सुनो, वहाँ खड़े तुम यहाँ खड़े हम, सोचो जरा, बोलो बोलो, अरे कुछ तो बोलो।

सुनो, किसी दिल वाले का सवाल सुनो, कहाँ चले जी जरा हाल सुनो, किसी दिल वाले का सवाल सुनो, वहाँ खड़े तुम यहाँ खड़े हम, सोचो जरा, बोलो बोलो और कुछ तो बोलो।

सुनो, किसी दिल वाले का सवाल सुनो, कहाँ चले जी जरा हाल सुनो, किसी दिल वाले का सवाल सुनो, वहाँ खड़े तुम यहाँ खड़े हम, सोचो जरा, बोलो बोलो कुछ तो बोलो।